ഭർജനം ഭൗമീജാനാം അർജനം സുഖസമ്പന്നാം.

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सहस्त्रों यत्नशील मनुजों में कोई एक ही सिद्धि प्राप्त कर पाता है, वह उनमें से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। श्री भगवान अपनी समस्त जड़ एवं चेतन शक्तियों का विवेचन करते हैं, वह स्वयं को प्रकृति के गुणों से परे त्रिगुण परम कहते हैं। मधुसूदन कहते हैं,

हे भरतऋषभ, दुष्ट नराधो मूढ़ असुर व माया के वश में अज्ञानी कभी भी मेरी शरण में नहीं आते। इसके विपरीत मुझे आर्त जिज्ञासु अर्थ अर्थी व ज्ञानी पुरुष भजते हैं। इन सब में मुझको ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय है।

पूजक देवों को जाते हैं और मेरे भक्त मुझको पाते हैं। मुझ अजन्मे अविनाशी को व्यक्ति भाव में जानने वाले मूढ़ व अज्ञानी हैं। श्री गोविंद के शब्दों में

0: अच्छति।
1: मैं पुराण पुरुष पुण्य सलिला गोमती का अभिनंदन करता हूँ। गोमती अथवा धेनुमती नाम से ही इसकी महिमा का बखान किया जाता है। इसकी पवित्रता से प्रभावित होकर ही देश के कई जलाशयों का नाम गोमती रखा गया है। काठियावाड़ के द्वारिका धाम मंदिर के निकट की नदी भी गोमती कही जाती है। पवित्र जल वाली गोमती प्रणाम।
2: ये किसने मुझे स्मरण किया है? किसने जल तरंगों के तार झंकार दिए हैं? हाँ, मैं गोमती हूँ। मेरा जन्म हिमालय से नहीं, हिमालय की तलहटी में पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में हुआ। मनियाकोट मेरा मायका है और माधोटांडा कस्बे की फुलहर झील मेरी माँ है।
1: इस उद्गम के लिए कहा जाता है कि एक सिद्ध संत की आस्था का वरदान है गोमती।
3: स्कंद पुराण के प्रभास खंड में एक श्लोक में जिन नदियों को पुण्य सलिला, पवित्र जलवाली और शुभ माना गया है, उनमें एक है गोमती।
4: श्री अनिल स्वरूप, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश ने बताया।
3: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के जिला गजेटियर के अनुसार जिले की नदियां अनेक विशिष्ट प्रणालियों की हैं। जिले के उत्तर की भूमि की संकीर्ण पट्टी का जल निकास होता है शारदा नदी में। पूरनपुर परगने के मध्यवर्ती भाग से बहुत सारे सोते फूटते हैं जो मिलकर बन जाते हैं गोमती।
1: मनियाकोट के आसपास कई जल स्रोत मिलकर एक होते हैं जो वास्तव में भाबर क्षेत्र के पथरीले इलाके के नीचे नीचे से आते हैं। ये अनेक शिराएं मिलकर बनाती हैं एक जलधारा, एक जीवन धारा। हमारी संस्कृति में जल को जीवन कहा गया है।
2: जनमानस से प्रवाहित होकर जब मैं चलने लगती हूँ तो मेरे संग की सहेलियां मुझसे मिलती हैं। दूर तक मैं उत्तर से दक्षिण की ओर भागती हूँ और फिर प्रवेश करती हूँ शाहजहांपुर जनपद में।
1: इसी जनपद से गोमती का रूप निखरता है। ये सोया सोया पानी जब जाग कर आगे चलता है, बढ़ता है, तो समाज के संस्कारी उपवनों को सींचता जाता है। रुहेलखंड में अपना बचपन बिताकर 67 किलोमीटर की यात्रा करके गोमती एक अल्हड़ किशोरी बनकर अवधांचल की सीमा में पांव रखती है।
2: परगना मोहम्मदी और पास गांवों के बगल से निकलते हुए मैं लखीमपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तक 152 किलोमीटर लंबा सफर तय करती हूँ। तराई के हरे भरे जंगलों की परछाइयां समेटते हुए, वन पक्षियों का कलरव सुनते हुए मैं बहती रहती हूँ।
1: गोमती एक नव यौवना की भांति इठलाती हुई चलती है। खीरी जिले के औरंगाबाद क्षेत्र के दक्षिण से होती हुई हरदोई जनपद में कदम रखती है। यहां से ये हरदोई सीतापुर जिलों की सीमा रेखा बनकर बहती है। यहां मिश्रित तहसील में बाई ओर से आकर कठिना नदी इसे अपना अर्घ्य देती है। कठिना नदी शाहजहांपुर जिले की मोती झील से निकलकर आती है। अब आता है गोमती का पहला पड़ाव, नैमिषारण्य तीर्थ।
5: पतिम्याम यानी तीर्थानी तानी तीर्थानी।

0: नैमिषी। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वो सब नैमिषारण्य में है।
1: नैमिषारण्य के जगदाचार्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने बताया,
0: सतयुग का ये महान तीर्थ इसलिए अद्वितीय कहा गया है कि यहाँ सतयुग में 88,000 ऋषियों ने 1,000 वर्ष तक ज्ञान किया है। पांडवों ने 12 वर्ष यहाँ तपस्या की है।
2: सतयुग से ही इस साधना स्थल आध्यात्मिक पीठ से सद्ज्ञान का प्रसारण होता रहा है।

यहां सूत जी के श्रीमुख से मुनियों ने भगवत कथा का श्रवण किया था। यहीं पर वेदव्यास द्वारा वेद विभाजन किया गया और हुई 18 पुराणों की रचना।

0: इसी नैमिषारण्य में सम्राट मनु और शत्रुपा ने परमेश्वर को पुत्र रूप में पाने के लिए गोमती तट पर तपस्या की थी।
1: पहुंचे

0: गोमती हरदोई जिले की सीमा रेखा बनकर हत्याहरण तीर्थ के निकट से होती हुई जब लखनऊ जिले की ओर आने लगती है तो इसके बाएं तट पर सरायन नदी गले मिलती है।
1: सरायन को साथ लेकर मैं आती हूँ लखनऊ जनपद में। महोना मलिहाबाद परगने के बीच से होती हुई मैं बसहरी घाट पर लासा देवी के ऊंचे मंदिर के नीचे से निकलकर बख्शी का तालाब कठवारा की चंद्रिका देवी के पांव धोती हूँ। यहाँ आसपास आमों के बाग हैं। आम्र मंजरी का मादक सौरभ बसंत ऋतु में मेरे तटों पर पसरे आंचल को सुवासित करता है। गर्मियों के मौसम में मेरे दोनों किनारों पर सुनहरे लखनऊवा खरबूजे पुखराज की तरह बिखर जाते हैं।
2: उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर कुछ खित्ते ऐसे हैं जहाँ पर कि आम की बहुत सी किस्में उगाई जाती हैं।
3: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश ने जानकारी दी।
2: लंगड़ा, दशहरी, चौसा, फजरी ये किस्में जो हैं प्रदेश की मुख्य किस्में हैं। विशेष करके दशहरी का जो मातृवृक्ष है वो करीब 200 साल से पुराना है। वो अब भी जीवित है दशहरी गांव में और उसमें काफ़ी अच्छी फलत आती है। किसानों की मांग पर प्रदेश सरकार ने जो पहली फल पट्टी आम पट्टी घोषित किया वो काकोरी, मलिहाबाद और माल की फल पट्टी है। और गोमती नदी के आसपास जितने और शहर पड़ते हैं वहाँ पर भी आम की खेती बहुत अच्छी की जाती है।
0: अब रानी मऊरेथा के बीच होती हुई गोमती मूसाबाग और छैला गांव से होकर आती है गौ घाट पर। अब आ गया लखनऊ, कोसल जनपद का पश्चिमी दुर्ग द्वार लक्ष्मणपुर, जिसने पौराणिक काल देखे, महाजनपदीय युग देखे, फिर राजपूत साम्राज्य के बाद भरों रजवासियों की राजधानी बनी लखनावती। लखनावती को छोटी काशी और गोमती को आदि गंगा भी कहा जाता है। आज भी गोमती लखनऊ के लक्ष्मण टीले का पद प्रक्षालन कर रही है। शेखजादों का लखनऊ, नवाबों का प्यारा लखनऊ और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मैंने इसे बहुत निकट से देखा है। मुगलकालीन नवाबों के चढ़ते उतरते वैभव को और गोमती के दाएं तट पर मच्छी भवन किले को बनते देखा, फिर 1957 के स्वाधीनता संग्राम में उजड़ते भी देखा। लखनऊ के पक्के पुल से

0: डूबते हुए सूरज को देखिए तो आपको एहसास होगा कि लखनऊ की शाम को लोग शामे अवध क्यों कहते हैं।
1: गोमती का जो महत्व है उसके बारे में ना तो इतिहासकारों ने कोई विशेष ध्यान दिया है और ना साधारण लोगों ने।
2: इतिहासवेत्ता डॉक्टर सुधींद्रनाथ कानून गो का मानना है।
1: हम लोग तो जैसे मैंने गंगा जमुना संस्कृति की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरे विचार में हम लोग उसको गंगा गोमती तहजीब या गंगा गोमती संस्कृति क्यों नहीं कहेंगे। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को आकर्षित करना चाहूँगा कि अवध जर्नल में 1971 में प्रोफेसर मुनीस रजा ने एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक लेख लिखी, डिलिमिटिंग अवध सुबह। उस अवध सुबह में सिर्फ गंगा जमुना के महत्व के बारे में नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने गोमती का भी अपना महत्व के बारे में उन्होंने काफ़ी प्रकाश डाला है। ये जो गंगा गोमती संस्कृति के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, इसको केवल एक कॉम्पोजिट कल्चर या के दृष्टिकोण से तो आलोचना तो करना तो चाहिए, लेकिन इसका आधार केवल हिंदू और मुसलमान के बीच में जो संबंध है वो नहीं है। इस कॉम्पोजिट कल्चर यानी गंगा गोमती संस्कृति का तो आधार जो है उसका नींव प्राचीन भारत में डाली गई। इसी गोमती के किनारे कितने बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे बाग बनाए गए हैं और उस बागों के साथ हमारे इतिहास जुड़े हुए हैं, चाहे सिकंदरबाग हो चाहे दूसरी चीज हो। और फिर मैं फिर से यही कहूँगा, 1857 के क्रांति के पहले रसल साहब जो टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट वो आए थे लखनऊ में, तब लखनऊ के बारे में वही गोमती किनारे पे खड़े होके लखनऊ के जो इतनी सुंदर दृश्य देख के उन्होंने बताया कि इस तरह का शहर जो है ना तो इसकी तुलना ना तो रोम के साथ तुलना की जा सकती है ना कॉन्स्टेंटिनोपल के।
3: लखनऊ में मेरे घाटों पर जब तब भीड़ उमड़ कर आती है। दशहरे के दिन दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए, चेटीचंड में वरुण पूजा के लिए या शहीद स्मारक पर दीपदान के लिए। सबसे बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा का मेला पूरे अघन मास चलता रहता है। लखनऊ के कुछ घाटों पर आप मंदिरों में मुझे मूर्तिमान भी देख सकते हैं। अगर आप मेरी 10वीं सदी की प्राचीन प्रतिमा देखना चाहें तो इसी जनपद के डिगोई ग्राम में देख सकते हैं। मेरे पानी में आई अपार बाढ़ ने लखनऊ नगर के कुछ हिस्सों को कई बार नहला दिया है। सन 1915 और 1923 की भीषण बाढ़ लोगों को भूली नहीं होगी, पर 1960 में तो हजरतगंज में नावें चलने लगी। कभी मेरे जल की स्वच्छता एवं पवित्रता के कारण मुझे आदि गंगा कहा जाता था। आज आबादी के दबाव, औद्योगिकरण तथा लापरवाही ने मुझे गंदे पानी का दरिया बना डाला है।
4: गोमती नदी पीलीभीत जनपद के माधो टांडा गांव से निकलकर लगभग 940 किलोमीटर की यात्रा तय करके गाजीपुर जनपद में ओडियार गांव में जाके गंगा नदी में मिलती है। इस यात्रा के दौरान प्रदेश के 8 जनपदों से होकर ये नदी गुजरती है। इस नदी में जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कई स्थानों पर किया जाता रहा है।
2: श्री प्रदीप कुमार, अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सचिव पर्यावरण उत्तर प्रदेश ने बताया,
4: इस अनुश्रवण से ये स्थिति सामने आई है कि कई स्थानों पर जो निर्धारित मानक हैं उनसे जल की गुणवत्ता काफ़ी खराब है। विशेष रूप से जहाँ तक लखनऊ का प्रश्न है, जो बैराज है उसके अपस्ट्रीम में जितना पानी में घुलनशील ऑक्सीजन होनी चाहिए उसकी अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही जो प्रदूषण का स्तर है जिसको बीओडी के रूप में नापा जाता है, तो बीओडी का स्तर भी अपस्ट्रीम ऑफ बैराज में निर्धारित मानकों की अपेक्षा

0: काफ़ी अधिक पाया गया है। ये जो गोमती नदी में प्रदूषण है, ये मुख्य रूप से दो कारणों से है। पहला तो ये कि गोमती और इसकी सहायक नदियों के किनारे करीब 18 औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं जो अपना औद्योगिक कचरा गोमती नदी में प्रवाहित करती हैं। इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं और 18 इकाइयों में से 14 इकाइयों में तो संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। 2 इकाइयों के बंदी के आदेश जारी किए गए हैं शासन द्वारा और बाकी 2 इकाइयों में संयंत्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो प्रदूषण गोमती में आज हो रहा है उसका कारण ये है कि लखनऊ शहर और बाकी जो शहर हैं उनका सीवेज और बाकी शहर का जो कचरा होता है वो बिना शुद्धिकरण किए गोमती और सहायक नदियों में डाला जा रहा है। जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार ये स्थिति निकल के आई है कि लखनऊ में शहर का जो सीवेज है उसकी मात्रा लगभग 250 मिलियन लीटर प्रतिदिन की है और 50 टन BOD लोड प्रतिदिन नदी में सीवेज द्वारा डाला जा रहा है। इसके विपरीत जितनी औद्योगिक इकाइयां हैं उनके द्वारा लगभग 2.5 टन प्रतिदिन BOD लोड नदी में डाला जाता है। तो इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि औद्योगिक इकाइयों की अपेक्षा शहर का सीवेज शुद्धिकरण ना हो पाने के कारण 25 गुना BOD लोड नदी में प्रवाहित हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि इसके बारे में शासन क्या कर रहा है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि गंगा एक्शन प्लान का द्वितीय चरण क्रियान्वित होने वाला है जिसके लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी है और इसके अंतर्गत जो गोमती नदी है उसके किनारे स्थित 3 शहर जिनमें लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर हैं उनमें शुद्धिकरण का काम किया जाएगा। नालों में जो पानी जाता है जो बाद में नदी में जाके मिलते हैं उनमें पानी डाइवर्ट करके सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी।
1: लखनऊ जनपद में अखंडी मंझावा गांव में, झिलंगी गोपरा मऊ में और बेता कांकराबाद में मेरे दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। कुकरायल ही यहाँ बाएं तट पर मुझसे संगम करती है। लखनऊ के पिपरिया घाट के बाद से शहर मुझसे दूर हो जाता है और मोहनलालगंज के सिकंदरपुर खुर्द के आगे लखनऊ जनपद भी मुझसे छूट जाता है। यही गस्कर में रेठ और सलेमपुर में लोनी नदी मुझ में मिल जाती हैं। अब आता है बाराबंकी जिले का दक्षिण भूभाग। यहाँ हैदरगढ़ के निकट से मैं गुजरती हूँ और इसी जिले में आकर मुझसे गले मिलती है कल्याणी नदी। उत्तर पश्चिम दिशा से मेरा प्रवेश सुल्तानपुर जिले में होता है। यहाँ उत्तर में मीरनपुर और दक्षिण में बरौंसा है। पास ही है जगदीशपुर की नए औद्योगिक विकास से जगमगाती धरती। इसी सुल्तानपुर शहर के बीच मैं चुपचाप निकल जाती हूँ सीता कुंड तीर्थ से। त्रेता युग में भरत जी चरण पादुका लेकर इसी मार्ग से अयोध्या लौटे थे।

0: इसके बाद मिलता है पांचों मीरन का गांव और उनके मजार। अब अल्देबहू और चांदा के बीच होकर पपड़िया घाट के बाद आता है धौत पाप तीर्थ। इस स्थान पर अल्देबहू नूरपुर परगने में मेरे तट पर सतई बाबा का प्रसिद्ध मठ है, जहां मेला लगता है। खुदाई में बहुत से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। भरों का राज सदियों से रहा है। शेरशाह के दो किले भी हैं। यही चांदीपुर में कंदूना लाकर मिलता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व की तरफ चलकर सिगरामऊ से जिला प्रतापगढ़ को छूकर मैं जौनपुर की मेहमान बनती हूँ।
1: मेरे जहन में इस वक्त एक अवनींद्रनाथ ठाकुर की बात याद आ रही है। एक बार उन्होंने कहा था कि गोमती एक अत्यंत सुंदर नदी है, और उन्होंने गोमती को गोमती ना कहकर गोमती नदी कहा था, और उसी

0: मनमोहनी गोमती नदी के किनारे ये जौनपुर का शहर बसाया गया था।
1: इतिहासविद डॉक्टर प्रदीप कुमार घोष ने कहा,
0: इस जौनपुर शहर में मध्यकालीन भारत का अतीत सोया पड़ा हुआ है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार जौनपुर का प्राचीन नाम जमदग्निपुर था, जो कि ऋषि जमदग्नि के नाम से रखा गया था। किंवदंतियों के अनुसार एक कथा और प्रचलित है कि रामचंद्र जी ने किरारावीर नाम के एक दैत्य को उसके अत्याचारों के कारण उसका दमन करने आए थे और उसको दमन करके उसके धड़ को वहीं छोड़ दिया था, और उसी स्थान पर उन किरारावीर के अनुयायियों ने एक मंदिर बनाया उसके नाम को अमर करने के लिए, और इसीलिए कहा जाता है कि उस स्थान का नाम बाद में जौनपुर पड़ा। लेकिन अय्या बिन अहमद ने अपने तारीख़ मुबारक शाही में लिखा है कि फिरोज़ तुगलक जब अपने बंगाल अभियान के लिए जा रहे थे
1: जी।
0: तो रास्ते में अत्यधिक वर्षा के कारण उन्हें एक जफराबाद नामक स्थान पर रुकना पड़ा, और वहीं से उन्होंने दूर गोमती को बहते हुए देखा। उस लुहावनी मनमोहनी दृश्य को देखकर उनके मन में आया कि यहाँ पे एक शहर बसाया जाए, और साथ में तक सब एक उनका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू शायद उनके दिमाग में था कि उन्होंने सोचा कि उस जगह को, उस नए शहर को उनके बंगाल अभियान के लिए एक फोकल पॉइंट बनाया जाए।
2: सन 1567 में मुगल सम्राट अकबर जौनपुर पधारे तो उन्होंने देखा, मेरे किनारे एक औरत खड़ी रो रही है।
3: अरे, नदी के सुनसान किनारे पर खड़ी तुम किस लिए रो रही हो?
4: जहां पना, मैं एक गरीब विधवा औरत हूं। मैं चरखे पर सूत काट कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मैं सूत बेचने दरिया पार आई थी, लेकिन अब लौटते वक्त यहाँ कोई नाव नहीं है, अंधेरा होने को है। उधर मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते करते थक जाएंगे और भूखे ही सो जाएंगे।
3: आए नेक खातून, मुझे तुम्हारे दुख की दास्तान सुनकर बेहद रंज हुआ है। मुनीम खान खाना
5: जी, बंदा परवर,
3: यहाँ पर एक पुल तामीर होना चाहिए।
5: महाबली, आपका हुक्म सर आंखों पर।
6: ₹30 लाख की लागत से तैयार हुआ जौनपुर का शाही पुल। खूबसूरत छतरियों वाला ये गोमती का पुल विश्व का पहला लेवल ब्रिज है। इसी की नकल पर सन 1810 में लंदन शहर का वाटरलू लेवल ब्रिज बनाया गया।
1: जौनपुर में जो एक कॉम्पोजिट कल्चर के जो उद्भव है उसके पीछे कोई कम्युनल टेंशन इस तरह के कोई बात नहीं थी। वो तो लोदी सुल्तान और जौनपुर सुल्तानों के बीच में आपस में जो झगड़ा था मैंने उसी का एक नमूना है।
7: डॉक्टर सुधींद्रनाथ कानूनगो के अनुसार
1: जौनपुर स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो गंगा गोमती संस्कृति के एक अपूर्व झलक आपको मिलेगी। शारकी सुल्तान नगर तो मुसलमान जरूर थे वहाँ पर, चाहे इब्राहिम शर्की हो चाहे हुसैन शाह शर्की हो। मैं शायद आपने गौर किया जो सबसे प्रमुख मस्जिद है जौनपुर में उसका नाम है अटल्ला देवी मस्जिद। अब ये अटल्ला देवी मस्जिद अभी भी मुसलमान लोग भी कहते हैं। अच्छा, उसके जो मेन आर्किटेक्ट है वो एक हिंदू था। एक दूसरे मस्जिद जामी मस्जिद उसका भी महत्व कम नहीं है, उसका भी जो आर्किटेक्ट है वो भी एक हिंदू, उसका नाम दिया हुआ है कमो विषाद्रु। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मध्यकालीन भारत में जौनपुर को शिराज ऑफ इंडिया कहा जाता था। कहने का मतलब यही है कि जौनपुर और लखनऊ ये जो दो प्रमुख शहर गोमती के किनारे बसे हुए हैं ये केवल एक शहर नहीं एक संस्कृति के भी प्रतीक है।
6: गोमती जौनपुर की झंझरी मस्जिद को अपने दाएं तट पर छोड़कर आती है कागज के इस छोटे शहर में जिसका नाम था जमैथा। यहां महर्षि जमदग्नि रेणुका और परशुराम जी का आश्रम रहा है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे शहरे अनवार का नाम दिया था। यहां फकीरों के कई मजार होने के कारण इसको जनता पीरन शहर भी कहती रही। बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जफर के नाम से इसे नाम मिला जफराबाद।
2: जौनपुर के आगे लगभग 29 किलोमीटर पूर्व तिरमुहानी पर सई नदी मेरे दाएं तट पर आकर मिलती है। इस संगम पर हर साल मेला लगता है।
6: गोमती आगे बढ़कर दक्षिण पूर्व की ओर वाराणसी और गाजीपुर जिले की विभाजक रेखा बनती है। यहीं बाएं किनारे पर इसका संगम होता है नंद नदी से। संगम से 8 किलोमीटर दूर गोमती अपनी पचरंगी चूनर लहराती हुई गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। यहां मार्कंडेय महादेव का सुविख्यात मंदिर है। यह वही स्थल है जहां राजा देवास ने दूसरी काशी बनानी चाही थी।

0: मैं ना पर्वतों से उतरी हूँ ना समुद्र में गिरी हूँ। उत्तर प्रदेश में ही मेरा लय होता है और उत्तर प्रदेश में ही विलय हो जाती हूँ।
1: खीरी जिला गजेटियर के अनुसार नदी के रेतीली मिट्टी के निचले तटों के अलावा कहीं भी गोमती सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं है।
2: श्री अनिल स्वरूप ने कहा,
1: अपने पूरे बहाव में गोमती कहीं भी सिंचाई के काम नहीं आती। रेतीली मिट्टी के निचले किनारों पर ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज तथा मौसमी साग सब्जियों की खेती परंपरागत ढंग से की जाती है। सीतापुर पहुंचकर गोमती नदी नावों के उपयोग का अवसर देती है, इसके बाद सीमित रूप से जलमार्ग का काम देती है। जौनपुर के जिला गजेटियर के अनुसार गोमती अपने आकार के बजाय अपने बहाव की लंबाई के लिए उल्लेखनीय है।
0: मैंने प्रगति के पौधों को पानी दिया है और दिया है सारे संसार को प्यार भरा संदेश।
3: गोमती ने जिस पथ को अपना जीवन मार्ग बनाया है, वही पथ इसके गंगा जमुनी चरित्र की पहचान है। गोमती की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सर्वधर्म समन्वय की। इस नदी ने इस महान राष्ट्र के सीने पर चंदन पानी की एक ऐसी लकीर खींची है जिसकी सुगंध ने न केवल देश को वरन सारे संसार को आकर्षित किया है, प्रभावित किया है।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना, सती दाह से दुखी होकर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए। इसका लाभ उठाते हुए असुर देवताओं पर हावी हो गए। असुर राज तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। हैरान परेशान देवताओं के लिए शिव पुत्र का पैदा होना आवश्यक बन गया। बहुत विचार विमर्श के साथ ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवताओं के साथ गिरिराज हिमवान के पास गए। वहां सबने मिलकर महादेवी शिवा की स्तुति की। प्रसन्न होकर जगदम्बा ने वरदान दिया कि वे हिमवान की पत्नी मीना के गर्भ से पार्वती बनकर अवतरित होंगी। इस प्रकार शिव मोहिनी पार्वती का जन्म हुआ। देवी पार्वती युवावस्था को पहुंच चुकी थीं, परंतु महादेव की तपस्या का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। परम पिता ब्रह्मा ने चिंतित हिमवान को आदेश दिया कि पार्वती शिव प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करें। लीजिए सुनिए अब आगे की कथा। इस प्रकरण के रूपांतरकार और लेखक हैं अनिल सूद।
1: परम विद्वान शौनक जी, देवी पार्वती को तपस्या करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु देवादिदेव का ध्यान तब भी न टूटा।
2: महाभाग सूत जी, इससे तो हिमवान और मीना की चिंता और भी बढ़ गई होगी।
1: हाँ, ये तो स्वाभाविक ही था, परंतु मीना की चिंता का कारण कुछ और ही था।
2: वो क्या सूत जी?
1: उनके हृदय में रह रहकर मुनि नारद का कथन कौंद रहा था कि पार्वती को एक कुरूप अर्धनग्न दरिद्र पति रूप में प्राप्त होगा। एक बार बड़ी विचित्र घटना घटी।
2: वो क्या सूत जी?
1: देवी मीना अपनी दिनचर्या से निवृत्त हो सो रही थी। देवी पार्वती भी अपने दैनिक व्रतों को श्रद्धा पूर्वक पूरे कर सो रही थी। तभी ब्रह्म मुहूर्त में माता और पुत्री को एक ही जैसे स्वप्न आए। एक के लिए वो सुस्वप्न था तो दूसरी के लिए दुस्वप्न।
3: अरे कैसा दिव्य वृषभ है ये! गले में स्वर्ण की घंटी, किसी राज मुकुट जैसे सिंह, मानो स्वयं नंदीश्वर चले आ रहे हो। ओह कैसा भद्दा काला वृषभ है! तीखी नुकीली सिंह, मानो अभी मेरा तन मन चीर डालना चाहते हो। बिल्कुल यमराज के भैंसे के समान। वृषभ पर आरूढ़ सन्यासी का मुखमंडल कितना तेजोमय है! ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण जगत का पुरुषत्व उन्हीं में समा गया हो। होठों पर मंद मंद मुस्कान, वृषभ पर ये कुरूप भभूतधारी बैठा है, तन पर व्याघ्र खाल उड़े, मेली कुचैली जटाएं, मानो वर्षों से स्नान न किया हो, रक्त रंजित नेत्र।
4: भिक्षुक आया है देवी, भिक्षा दो।
3: अवश्य ऋषिराज, आप यहाँ इस आसन पर क्षण भर विश्राम करें, मैं अभी आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ।
5: नहीं, तुम कोई कुलहीन अघोरी लगते हो, हम ऐसे अपवित्र और अस्वच्छ व्यक्तियों को भिक्षा नहीं देते।
4: जलपान के लिए धन्यवाद देवी पार्वती, आप अति सभ्य एवं धर्माचरण वाली हैं।
3: आपकी इस प्रशंसा से मैं धन्य हुई मुनिवर, ये सब प्रभु शंकर की भक्ति का ही फल है।
5: अरे ये कितनी कुटिल और कामुक दृष्टि से पुत्री पार्वती की ओर देख रहा है, कौन हो, कौन हो तुम?
4: मैं शिव हूँ, पार्वती को साथ ले जाने आया हूँ।
3: मेरा जीवन सार्थक हुआ देवाधिदेव। अंततः आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो ही गए। चलिए देव।
4: चलिए।
3: नहीं नहीं, तुम शिव नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही कोई मायावी असुर हो, मेरी पुत्री का हरण करने आए हो। छोड़ो छोड़ो इसका हाथ, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, परंतु इसे तुम्हारे जैसे कर्कश और कुलहीन के हाथों नहीं सौंपूंगी, नहीं कभी।

0: क्या मैं स्वप्न देख रही थी? हे प्रभु, एक कैसा भयंकर स्वप्न था, भयंकर स्वप्न, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। कैसा कैसा भयंकर था, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। हे प्रभु, हे प्रभु, ये स्वप्न सच न हो प्रभु, सच न हो दया निदान, ये स्वप्न सच न हो। चलो चलो देव मान से इस स्वप्न का अर्थ पूछती हूँ।
1: कितना मनोरम और दिव्य स्वप्न था। स्वयं देवाधिदेव मुझे लेने आए थे। मैं तो इस स्वप्न मात्र से धन्य हो गई।
2: भार्य मीना
3: जी। देव
2: पुत्री पार्वती
3: जी। पिताजी

0: अब दोनों के स्वप्नों में प्रभु शिव शंकर ने ही दर्शन दिए थे। पुत्री पार्वती, तुम्हारे हृदय पटल पर बचपन से ही तेजस्वी प्रभु की सौम्य और सुकोमल छवि अंकित है, इसलिए वो इसी रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए। और भार्य,
1: कहिए स्वामी।
0: आपके मन से नारद जी द्वारा चित्रित प्रभु छवि मिट नहीं पा रही है, इसीलिए वो आपके मन वांछित रूप में प्रकट हुए, परंतु थे दोनों देवाधिदेव ही।
1: स्वामी हिमवान, यदि शिव जी का वही स्वरूप है जो मैंने देखा है तो वो मुझे स्वीकार नहीं है।
0: भार्य,
1: हाँ, मैं कदापि अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में नहीं दूंगी।
0: तुम्हारा पुत्री प्रेम आदरणीय है, मैं भी पार्वती से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि तुम, परंतु भार्य, हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते, और तथ्य यह है कि देवर्षि नारद की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। पार्वती को शिव मिलेंगे, परंतु किस रूप में, ये जानने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी देवी, प्रतीक्षा।
2: मुनिवर शौनक जी, पिता के मुख से ये सुनकर कि उन्हें शिव अवश्य मिलेंगे, देवी पार्वती प्रसन्न मन से फिर शिव आराधना में जुट गई। देवी मैना भी शांत हो गई, परंतु अनयत्र विपत्तियों के घोर घन गरज उठे थे।
3: विपत्तियों के घन, वो कैसे सूत जी?
2: देवाधिदेव के ध्यान मग्न होते ही असुरों के उत्पात बढ़ गए थे। तारकासुर इतना बलशाली हो गया कि उसने तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। देवेंद्र को हराकर वो इंद्रासन का स्वामी भी बन बैठा। देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी एकत्र होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे।
4: हम जानते हैं देवगण, हम जानते हैं, ये विश्व वृक्ष हमारा ही बोया हुआ है। हमारे वरदान से सिंचे हुए इस असुर ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है।
5: और ब्रह्मदेव, ये वृक्ष तब तक नहीं कट सकता जब तक स्वयं शिवपुत्र रूपी कुल्हाड़ी इसे काट ना डाले। कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा विधे, महाप्रभु की तंद्रा भंग करनी ही होगी।
4: हाँ विष्णु जी, जो हम नहीं चाहते थे वो हमें अब करना ही होगा। प्रभु के मन में अस्वाभाविक रूप से प्रेम का प्रत्यारोपण करना ही होगा। कामदेव।
0: आज्ञा परम पिता ब्रह्मा।
4: हमारी इच्छा है पुत्र कामदेव कि तुम रति के साथ गंगोत्री तीर्थ जाओ। वहां ध्यानमग्न शिवजी के मन में देवी पार्वती के प्रति आसक्ति भरने का प्रयास करो।
0: अर्थात उनकी तपस्या भंग कर दूं? दक्षराज के प्रति महाप्रभु का क्रोध सबको ज्ञात है प्रभु।
4: कामदेव, हम देवता हैं, जन कल्याण के लिए हमें सभी विषमताओं का सामना करना पड़ता है। भयभीत होना हमारे स्वभाव में नहीं है। फिर तुम्हारे पास तो अचूक काम बाण भी हैं, ऐसे ही कठिन अवसरों के लिए तो हैं। आवश्यकता पड़े तो उनका उपयोग करने में झिझकना नहीं।
0: आपकी आज्ञा का पालन होगा परमपिता।
2: विप्रवर शौनक जी, कामदेव और रति अपने दल बल समेत गंगोत्री तीर्थ पहुंचे।
3: महाभाग सूत जी, दल बल से आपका क्या तात्पर्य है?
2: शौनक जी, अपनी सहायता के लिए रति और कामदेव वसंत देव तथा अनेक किन्नर वादकों को भी लेकर गए थे, ताकि शिव जी का मन मोहने के प्रयास में कहीं कोई कमी न रह जाए।
0: देवी रति,

0: मन तो नहीं करता कि इतने निश्चल भाव से तपस्या में लीन महाप्रभु की तपस्या में विघ्न डाला जाए, परंतु ब्रह्म आदेश मानना हमारा परम कर्तव्य है। आओ कोई युक्ति सोचे देवी, जिससे प्रभु की तंद्रा भंग हो सके।
1: जी देव।
0: नृत्य नृत्य। हाँ देवी नृत्य। देवी रति तुम नृत्य करो।
1: नृत्य?
0: हाँ, तुम्हारे नुपुरों की झंकार और किन्नरों के वाद्यों के मधुर स्वर अवश्य ही महादेव का मन मोह लेंगे। किन्नरों, अपने वाद्यों से ऐसा मधुर और उत्तेजक संगीत उत्पन्न करो जो प्रभु के हृदय के तारों को झंकृत कर दे। प्रभु पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। देवी रति, भाव भंगिमा को और उत्तेजक करो। संगीत की गति तीव्र कीजिए किन्नरों। नहीं नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। और उत्तेजक, उत्तेजना की चरम सीमा, और तीव्र गति, और गतिमान संगीत।

0: बस बस देव बस, और संभव नहीं है।
1: देवी,
0: नृत्य करते करते 8 प्रहर बीत गए हैं, मेरे पांव प्राणहीन हो रहे हैं, मेरे नुपुर टूट चुके हैं जो अमंगल सूचक है। देव कुछ कुछ और उपाय कीजिए।
1: और उपाय? हाँ, वसंत, वसंत देव। वसंत देव के आगमन से तो हिमपिंड भी पिघलना आरंभ हो जाता है। देवी, चारों ओर रंगों की फुहारें फूट उठती हैं, मन आनंद के हिंडोले में झूल उठता है। वसंत देव, आप ही अपनी लीला रचिए, इस कठोर पर्वत प्रदेश को वसंती सौम्यता में बदल डालिए। वसंत देव, बदल डालिए। वसंत देव, हो देवी रति, वसंत देव भी सफल नहीं हो पाए।
0: देव।
1: हाँ देवी।
0: अब तो मात्र एक ही उपाय बचा है।
1: क्या?
0: आपके काम बाण।
1: हाँ?
0: परम पिता ने भी आपको इनके प्रयोग की अनुमति दी है।
1: आप ठीक कहती हैं देवी रति, ठीक कहती हैं आप। मेरे सामने अब और कोई विकल्प नहीं रह गया है, परंतु देवी रति, मैं तो इसकी कल्पना मात्र से सिहर उठता हूँ। भय है कि देवाधिदेव की ओर बाण लक्षित करते समय कहीं मेरे हाथ ना कांप उठे, लक्ष्य ना चूक जाए।
0: स्वयं देवाधिदेव का स्मरण करते हुए बाण चलाएं देव, वो अलक्षित नहीं हो पाएगा।
1: हाँ, उधर उस विशाल वृक्ष की ओट से वार चलाता हूं। प्रभु पर सामने से वार करने का साहस मुझ में नहीं है। वसंत देव, किन्नरों, आप भी वृक्षों की ओट ले लें। प्रभु, देवाधिदेव, महादेव, क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा, मैं विवश हूं। ओम नमः शिवाय।

शिवा। अरे अरे अचानक मेरे शरीर में ये कंपन कैसे हुआ? मानो कोई अदृश्य वस्तु मेरे आर पार हो गई हो। ये मेरे चारों ओर ये मनोरम वातावरण, मेरे अंदर कौन सी भावना जाग रही है? परंतु मैं तो तपस्या कर रहा था, उसमें ये विघ्न किसने डाला? किसने मेरे चित्त में ये विकार पैदा किया?

0: देव।
1: हाँ देवी।
0: दूसरा बाण चलाइए, प्रभु का क्रोध बढ़ रहा है।
1: हाँ देवी हाँ।
2: अरे कामदेव ठहर जा, धनुष में ही रोक ले अपने बाण को।
1: हे परमपिता, हे भगवान विष्णु, शक्ति दे ताकि मैं दूसरा बाण चला सकूं और प्रभु का क्रोध शांत कर सकूं।

0: कर दूंगा।
1: महाप्रभु का तीसरा नेत्र खुल रहा है।
2: देवी, देवी,
1: ये तो अग्नि किरण बनकर मेरे पति की ओर बढ़ रही है।
2: महादेव,
1: इसने तो कामदेव को भस्म कर डाला।

छोड़ने को प्रेरित किया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं?

0: ब्रह्मदेव, देवी रति तो पति वियोग में मूर्छित हो गई, और देखिए तो महाप्रभु के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि विकराल रूप से फैलने लगी है। मूर्छित देवी रति को भी निगलने को झपट रही है। कुछ कुछ करे विधात।
1: मैं नेत्र बंद कर दिव्य अश्व का स्मरण करता हूं। अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि। दिव्य अश्व उपस्थित हो। हे दिव्य अश्व, इस अग्नि को अपने शरीर में धारण करो।
0: अग्नि इस वाडव अर्थात अश्व में प्रवेश कर गई है। ब्रह्मदेव, नेत्र खोलिए।
1: हे वडवानल, जाओ समुद्र के गर्भ में समा जाओ। प्रलय काल तक समुद्र का जल पीकर इस अग्नि को शांत रखना। प्रलय आने पर ही तुम समुद्र से ज्वालामुखी के रूप में फूटकर सब कुछ भस्म कर दोगे।

0: हे देव, हे स्वामी, मैं आपकी दोषी हूँ, मुझे क्षमा करें। देव, आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, त्याग दूंगी।
1: शांत शांत हो जाओ पुत्री रति।
0: कैसे शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं? हे ब्रह्मा, हे विष्णु, इस अभागन का भी अंत कर दीजिए। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम।
1: हे दयानिधान, हे कृपा सिंधु परमेश्वर, नेत्र खोलिए प्रभु, हम भक्तों पर कृपा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए।
2: हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा हृदय बहुत खिन्न है।
3: महाप्रभु, आप तो भक्तों के बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं, फिर कामदेव ने ऐसा अपने किसी स्वार्थ साधन के लिए तो नहीं किया था?
1: उसे हमारा ही आदेश था प्रभु। तारकासुर से पीड़ित हम सब देवों ने ही उससे यह करवाया था। देवाधिदेव, यदि आपने अपना क्रोध नहीं त्यागा और हमें क्षमा नहीं किया, तो हम सब यही समझेंगे कि आप हम सबका संहार कर देना चाहते हैं।
3: दयानिधान, देवी रति पर दया कीजिए प्रभु, कामदेव इन्हें लौटा दीजिए प्रभु। बिना पति पत्नी शोषण और धिक्कार का पात्र बन जाती है।
2: विष्णु हरे, हम अपने ही किए को बदल नहीं सकते, परंतु

0: जी महाप्रभु।
1: द्वापर में कामदेव कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होंगे, उनका नाम प्रद्युम्न होगा। जाओ शंबर नगर में कामदेव के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करो।
0: जो आज्ञा देवाधिदेव, जो आज्ञा।
2: परंतु महादेव, काम के बिना तो दैहिक संबंधों द्वारा उत्पत्ति ही समाप्त हो जाएगी, सृष्टि का विस्तार कैसे होगा महाप्रभु?
1: ठीक है, मैं सबके हृदयों में काम को फिर जीवित कर दूंगा। निश्चिंत रहिए, मेरी तपस्या भंग हो चुकी है, अब मुझे कैलाश लौटना होगा।
3: और महाज्ञानी शौनक जी ये कहकर शिवशंकर अंतर्धान हो गए। देवी रति पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में शंबर नगर में जा बसी। सभी देवता अपने अपने धामों को लौट गए।
4: परंतु महाभाग सूत जी, समस्या तो वही की वही रह गई। इस सब उपक्रम का उद्देश्य था तारकासुर वध के लिए शिव पुत्र की उत्पत्ति, वो तो नहीं हो पाई ना।
3: शौनक जी, कार्यों में व्यवधान तो आते ही रहते हैं, फिर शिव पुत्र उत्पत्ति कोई साधारण कार्य तो था नहीं, दैवी विधान था जिसे अपने निश्चित समय पर पूर्ण होना था।
4: परंतु सूत जी, व्यवधान आने पर हाथ रखकर तो नहीं बैठा जाता, प्रयास तो जारी रखने ही पड़ते हैं।
3: विप्रवर सूत जी, प्रयास जारी रहे, या यूं कहिए कि प्रयासों की तीव्रता बढ़ गई।
4: वो कैसे सूत जी?
3: बताऊंगा महामुनि शौनक जी, अवश्य बताऊंगा, परंतु आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कथा अभी लंबी है, जारी तो रहेगी।
5: श्रोताओ, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड के 9वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक चलिया गया था।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम सुमिरन उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

0: air.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकते ने। अर्जियां भेजने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ये कोई नियमित रोजगार नहीं है।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम के 4:30 बज गए ने। आओ हुण असी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करते हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

अब धनुष यज्ञ का समाचार सुनते ही मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ ले जनकपुर की ओर चल देते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की छठी कड़ी।

0: कुंदेन्दीवर सुंदरावतिबलौ विज्ञानधामावुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृंदप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवरमौ हितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिना। सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। महापराक्रमी राम और लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव पहले तो चिंतित हुए कि कहीं बाली ने ही तो इन्हें नहीं भेज दिया है। फिर विचार कर हनुमान जी को सारी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्री राम जी के निकट पहुंचे।
1: भद्र पुरुषों की सेवा में मेरा प्रणाम।
2: प्रणाम।
1: कुतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनबीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत बिचरहु बन स्वामी कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन देवताओं में से तो नहीं है या फिर आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार।
2: वीरवर कोसलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारे सुख मारे सुहाई। पंचवटी से किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है। हम दोनों उन्हें खोज रहे हैं। बस यही हमारी गाथा है। अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए।
1: स्वामी मेरा आपसे परिचय पूछना तो न्याय संगत था। मैंने वर्षों बाद आपको देखा है।

0: वो भी तपस्वी के वेश में। अपनी बानरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको पहचान नहीं सका, परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं। फिर तुम पूछो कस नरकी नाई, तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान।
1: हनुमान हनुमान,
0: मानता हूं प्रभु मैं अवगुणों की खान हूं, किंतु आप मुझको भूल जाए। स्वामी मैं मानता हूं हर जीव आपकी माया से मोहित है, आपकी कृपा से ही भव सागर से पार हो सकता है। फिर प्रभु मैं तो भजन उपाय कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी तरह सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है।
1: हनुमान हनुमान उठो, मेरे हृदय से लग जाओ।
2: तात, आपके नेत्रों में अश्रुकण।
1: यह अश्रुकण नहीं लक्ष्मण, यह हनुमान से मिलने का उल्लास है। अपने मन में क्लानी मत लाओ कभी, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो।
2: सब आपको समदर्शी कहते हैं, आपके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय है।
1: पर मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझको छोड़कर उनका कोई और सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
0: नाथ सैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब आई। तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी तेहि अभय करीजिए। सो सीता कर खोज करा इह, जहां ता मरकट कोट पठा इह।
3: इस प्रकार हनुमान ने श्री राम जी को सुग्रीव की कथा समझाई, फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को इस प्रकार हनुमान के साथ आते देखा, तो अपने जन्म को धन्य समझा। मन में सोचने लगा, हे विधाता, क्या ये मुझसे स्नेह करेंगे? उनके आते ही सुग्रीव ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। राम ने उन्हें कंठ से लगा लिया। तब हनुमान ने उन दोनों को एक दूसरे की गाथा सुनाकर, अग्नि की साक्षी कर, उन दोनों में मित्रता करवाई। कीनी प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा।
4: वानरराज, मेरे भाई महापराक्रमी राम हैं। हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। राम के शौर्य से संपूर्ण वन राक्षस विहीन हो चुका है। खर, दूषण, त्रिशरा और कबंध जैसे महाबली राक्षस राम के हाथों मारे जा चुके हैं। इस पर खींचकर राक्षस राज रावण ने सीता जी का अपहरण किया है। हम उन्हें ही खोजते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
5: देव, आप लोग चिंता न करें, सीता जी आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं यहां बैठा हुआ अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें ही देख दीने पट डारी।
1: वो वस्त्र मुझे दिखाओ सुग्रीव।
5: अभी लो प्रभु, ये लीजिए प्रभु।
1: वही है, सीता के ही वस्त्र हैं।
5: प्रभु आप चिंता न करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मैं वो हर संभव उपाय करूंगा जिससे सीता जी आपको मिल जाएं।
1: मुझे तुम पर विश्वास है सुग्रीव। अब एक बात बताओ सखा, तुम इस प्रकार वन में क्यों रह रहे हो?
5: स्वामी, मैं और बाली दो भाई हैं। कभी हम दोनों में ऐसा स्नेह था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की गाथा है, मैं दानव का महाबली पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और आधी रात के समय ऊंचे स्वर में बाली को ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार कैसे सहन कर सकता था? बाली हुंकार कर उसके पीछे भागा। मैं भी ये सब देख भाई के साथ साथ चला।
6: दुष्ट मायावी ठहर, मैं तुझे तेरी ललकार का प्रत्युत्तर दूंगा। सुग्रीव।
1: हाँ भैया।
6: तुम देख रहे हो मायावी इस पर्वत की गुफा में घुस गया है, तुम एक पखवाड़े तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन तक लौट कर नहीं आ सका तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है।
5: भैया ये आप क्या कह रहे हैं?
6: मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गुफा भी जाकर इससे युद्ध करूंगा।
5: प्रभु मैं वहां 1 मास तक रहा, तब एक दिन मैंने देखा गुफा से खून की बड़ी धारा बह निकली है। मायावी ने बाली को मार दिया है और मुझको आकर मार देगा, क्योंकि मैं बाली से अधिक बली नहीं हूं। ये सोच मैं गुफा के द्वार पर विशाल शिलाखंड लगाकर लौट आया। मंत्रियों ने राजधानी को बिना स्वामी के देखा, मेरी इच्छा ना होने पर भी उन्होंने मुझे राजा बना दिया।
1: चुप क्यों हो गए सुग्रीव, बोलते क्यों नहीं?
5: कुछ दिनों बाद बाली शत्रु को मारकर घर लौटा। आश्चर्य तो यह था प्रभु कि उसके हृदय में मेरे प्रत्येक शत्रु के समान रोष था। रिपु सम मोही मारे से अति भारी, हरि लीने से सर्वसु अरिनारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला, यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही।
1: सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उबरे ही प्राण। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, सिद्धांत कहता है जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। अतः सखा सुग्रीव मेरे बल पर अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो, मैं हर प्रकार तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा।
5: देव बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है, देखिए वो दुंधवी राक्षस की अस्थियों का समूह है, ताड़ के वृक्ष हैं। ऐसी बात प्रचलित है कि जो इनका विनाश कर सकेगा उसी के द्वारा बालीवध होगा।
1: तो लो मैं इन्हें एक ही बाण से नष्ट किए देता हूं।
5: आश्चर्य, एक ही बाण ने यह चमत्कार कर दिखाया। मुझको विश्वास हो गया कि आप निश्चित वाली का वध करेंगे।
1: निश्चिंत रहो सुग्रीव, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा।
5: बाली तो मेरा उपकारी है, जिसकी कृपा से दुखों का नाश करने वाले आप मुझे मिले। नहीं प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, सुख संपत्ति परिवार और अहम का त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं।
1: ऐसा ही होगा, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बाली मारा जाएगा और तुम किष्किंधापति बनोगे। उठो सखा, यह वैराग्य की वाणी छोड़ो और बाली से युद्ध करने को तत्पर हो जाओ। आओ मेरे साथ।
7: बाली, बाली, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं, शक्ति है तो आकर मुझसे युद्ध करो।
8: आज इस सुग्रीव को क्या हो गया, कहीं भांग तो नहीं खा गया?
7: ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ।
9: स्वामी, स्वामी, पहले मेरी एक बात सुनिए।
8: क्या है?
9: ये सुग्रीव नहीं गरज रहा, ये राम और लक्ष्मण की शक्ति गरज रही है। सुनो पति, जिन्हें मिले वो सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीमा, कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा।
8: भीरु प्रिय, राम समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगे तब भी मुझको परम पद प्राप्त होगा।

0: दुहाई है प्रभु, आपकी दुहाई है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है।
1: मैं भी विवश था सुग्रीव, तुम दोनों भाई समान रूप के हो। मैं भ्रम में पड़ गया, सोचा कहीं बाली के धोखे में तुम ही न मारे जाओ। लो ये पुष्पमाला धारण करो ताकि मुझको तुम्हारी पहचान रहे। जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो।
2: स्वामी, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इस पर भी आपने पेड़ की ओट में छिपकर व्याद की भांति मुझे मारा। मैं पहले सुग्रीव प्यारा, अब कुन कबन नाथ मैं मारा।
1: अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बने कछु पाप न हुई। मोढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसी न काना। मम भुजबल आश्रित तेही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी।
2: स्वामी, स्वामी, आपसे मैं चतुराई में नहीं जीत सकता। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर भी मैं पापी ही रहा।
1: सुनो बाली, मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूं, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो।
2: नहीं नहीं कृपा निधान रही मुनिगण, जन्म जन्मांतर यत्न करने पर भी जिस गति को प्राप्त नहीं होते, वो मुझको सहज में ही मिल गई है। चाहने पर भी अंत समय लोग राम नाम नहीं ले पाते, और मेरे सम्मुख तो साकार राम खड़े हैं। ऐसा संयोग क्या फिर आएगा। सो नयन गोचर जा सुकुन, नित नेति कहीं श्रुति का वही। जित पवन मन गो निरस कर, मुन ध्यान कबूक पावही। वही जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीर ही। अस कबन सट हटी काटी सुर तरु बारी कर ही बबू रही। अब नाथ करी करुणा विलो कहु, देहु जो वर मांगहु। जही जोनी जन्मों कर्म बस, तह राम पद अनुराग हु। प्रभु, देवताओं और मनुष्यों के नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है। बल पराक्रम और विनय में मेरे ही समान है। इसकी बाह पकड़कर आप इसे अपना दास बनाइए, इसे आश्रय दीजिए।
1: तथास्तु।
3: स्वामी, मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी, पर आपने मेरी बात न मानी।
4: पिता, तुम्हारे बिना अब हमारा सहारा कौन बनेगा?
1: देवी तारा, धैर्य से काम लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन्हीं पांच तत्वों से ये अधम शरीर रचा गया है। वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। जीव तो नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो?
3: प्रभु, मुझको अपनी परम भक्ति का वरदान दो।
1: निश्चित देवी। सखा सुग्रीव, बाली तुम्हारे अग्रस्त थे, विधिवत इनका दाह संस्कार करो। और लक्ष्मण, तत्पश्चात तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजपद और अंगद को युवराजपद से सुशोभित करो।
5: रघुपति की प्रेरणा से सब लोग उन्हें प्रणाम करके विदा हुए, सभी कार्य विधिवत हुए। तब लक्ष्मण जी ने सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाकर उनके सम्मुख सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बनाया। अब ग्रीष्म बीतकर वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। वर्षा काल बिताने के लिए श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके।

0: ताज,
1: आज आपका मन कुछ उद्विग्न लग रहा है।
2: प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उसके गूढ़ रहस्य में खो गया है मन। इस वर्षा ऋतु को देखकर अनेक विचार मेरे मन में उठ रहे हैं।
1: मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ तात। हमारे वनवास काल में जितनी बार वर्षा ऋतु आई है, जानकी जी साथ रही हैं। इस बार उनकी अनुपस्थिति आपको व्याकुल किए हुए है।
2: तुम ठीक कहते हो तात। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन बोरा। उधर देखो लक्ष्मण, जैसे विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं। पर्वत बूंदों के आघात को इस प्रकार सह रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी छोटी नदियां किनारे तोड़कर इतराती हुई चल रही हैं जैसे क्षुद्र लोग थोड़ा सा धन पाते ही मर्यादा तोड़कर प्राण लेते हैं।

0: लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई है, किंतु
1: किंतु क्या तात, आप चुप क्यों हो गए?
0: लक्ष्मण, अभी तक सीता के विषय में कोई समाचार नहीं मिला। एक बार कैसे भी उसका समाचार प्राप्त हो जाए तो राक्षस राज्य क्या काल को भी जीतकर मैं उसे ला सकता हूं। यदि वह कहीं भी जीवित हुई तो मैं इसे यत्न करके अवश्य लाऊंगा।
1: तात,
0: सुग्रीव हूं सुधि मोरी बिसारी, बाबा राजकुश पुर नारी, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूड कह काली।
1: बहुत दिनों बाद आज धनुष पर पाँच चढ़ाने का अवसर मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आप शुभ ना हो, मैं अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव की बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ।
0: वहां जाकर कोई अनिष्ट न कर देना लक्ष्मण, केवल भय दिखाकर सखा सुग्रीव को यहाँ ले आओ।
2: जिनकी कृपा से मद और मोह छूटते हैं, ऐसे श्री राम जी को कभी स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? ये क्रोध तो केवल लीला मात्र है। ज्ञानी ऋषि जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रखी है, वे ही इस लीला के रहस्य को जानते हैं। इधर किष्कंधा में हनुमान मन ही मन सोचने लगे, श्री राम जी के कार्य को सुग्रीव तो भूल ही गए हैं। उन्होंने जाकर सुग्रीव को स्मरण कराया। सुग्रीव ने कहा, वास्तव में ही हनुमान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। विषय वासना ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है। ऐसा करो पवन पुत्र, जहां जहां वानरों के समूह रहते हैं वहां वहां दूतों को शीघ्र भेजो और कहलवा दो कि 15 दिनों में जो नहीं आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाए।
1: कहां है सुग्रीव, उन्हें शीघ्र बुलाओ, नहीं तो मैं पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा।
3: मैं युवराज अंगद प्रणाम करता हूं देव, हम लोगों को अभिदान दें, हमारे अपराध को क्षमा करें।
1: डरो मत अंगद।
4: हनुमान, हनुमान।
5: आज्ञा महाराज।
4: देवी तारा को साथ ले जाकर लक्ष्मण जी को समझाओ, उनके क्रोध को शांत करो।
6: हम उन्हें अभिभवन में लेकर आते हैं महाराज। मैं प्रणाम करती हूँ भगवान।
5: मेरा भी प्रणाम स्वीकारें देव, हमें आशीष दें।
1: मेरा आशीष सदैव आप लोगों के साथ है।
6: आइए प्रभु, राजभवन को अपने चरणों से पवित्र कीजिए।
4: मुझको अपनी भूल का पश्चाताप है देव।
1: उठो वानरराज, मेरे कंठ से लग जाओ।
4: हे नाथ, विषय के समान कोई मत नहीं है, मैं तो साधारण जीव हूं, जबकि ऋषियों तक के मन में ये मोह उत्पन्न कर देता है।
5: लक्ष्मण जी, हमने सब दिशाओं में बानर यूथ बुलाने के लिए दूत भेजे हैं।
1: ठीक है, आओ अब श्री राम जी के पास चले।
2: हर के चले सुग्रीव, तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। श्री राम सुग्रीव आदि के बीच जानकी जी की खोज के लिए बातें होने लगी। यही विधि होत बत कही, आए बान रजूत, नाना बरन सकल दिसि देखिए की सुबरूत। तब सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब बानर योद्धा जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहा,
5: शांत हो जाओ, सब शांत होकर सुनो। वानर वीरो, सीता जी की खोज के लिए आपको यहां बुलाया गया है, यह भगवान राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है आप सब लोग सीता जी को जाकर खोजो, इसके लिए 1 मास की अवधि है। जो बिना सुध लिए अवधि समाप्त करके लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा।
7: भगवान राम की जय! भगवान राम की जय! बाला राज सुग्रीव की जय! बाला राज सुग्रीव की जय! बाला राज सुग्रीव की जय!
5: सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मतिधीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुध पूछे सब काहू, मन क्रम वचन सो जतन विचारहू, रामचंद्र कर काज सवार।
8: यह मेरी मुद्रिका है हनुमान, यह सीता को देना, उन्हें सब प्रकार से समझाना, मेरे विरह प्रेम शक्ति सबके विषय में उन्हें बताना और शीघ्र लौटना।
2: हनुमत जन्म धन्य करी जाना, चलेउ हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जी से आज्ञा लेकर ये वानर योद्धा सीता जी की खोज में आगे बढ़े।

0: सबने उस तपस्विनी को प्रणाम किया, अपना वृत्तांत सुनाया, उससे आज्ञा लेकर जी भर स्नान किया, वाटिका से मधुर फल तोड़ तोड़ कर खाए, थोड़ी देर आराम किया। तब तपस्विनी ने इन्हें अपनी कथा सुनाई और कहा, मैं तो अब वहां जा रही हूं जहां भगवान रामचंद्र हैं, उनसे उनकी अनपायनी भक्ति पाकर बद्रिकाश्रम चली जाऊंगी। तुम लोग इस विवर से निकलकर आंखें मूंदना, आंखें मूंदते ही सिंधु तट पहुंच जाओगे।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अवधि समाप्त हो चुकी है और काम कुछ भी नहीं हुआ।
2: दोनों प्रकार से अब तो मृत्यु दिख रही है। इधर सीता जी का पता नहीं लग रहा, कब तक इन पनों में भटकते रहेंगे। किष्किंधा लौटे तो बानर राज हमारा वध कर देंगे। मेरा वध तो वो मेरे पिता की मृत्यु के साथ ही कर देते। भगवान श्री राम ने मेरी रक्षा कर ली। सुग्रीव का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। अब मुझको तो अपनी मृत्यु में कोई संदेह नहीं दिख रहा।
1: सुनो युवराज, तुम्हारे कारण सभी अधीर हो रहे हैं, सभी की आंखों में पानी है। ये हम सबका निर्णय है। हम सीता जी की सूचना लिए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे।
3: आओ लवण सागर के तट की ओर चलते हैं।
1: यहां कुशा बिछाकर थोड़ी देर विश्राम करें।

0: फला जटायु का बड़ा भाई संपाती तो नहीं?
1: मेरा विचार है वही है।
2: आज सब ही कह पर जाने का रहा हूं, चले आहार बिन मर तब उन्हें मिल भरी उधर आहारा। आज दीन विधि एक ही वारा।
3: अब तो साकार मृत्यु सामने आ खड़ी हुई है,
0: इससे निपट लेंगे। सोचने की क्या बात है,
3: वास्तव में कितना जटायु के समान कोई धन्य नहीं हो सकता। ये परम भाग्यवान है जो भगवान राम की खाज अपने प्राण त्याग कर परम धाम।
2: सुनो बंधु, मुझे समुद्र के तट तक ले चलो, मैं जटायु को दिलाने के लिए दूंगा। फिर मैं तुम्हें सीता जी के बारे में बताऊंगा।

0: सुनो वानर वीरों, मैं और जटायु बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। यौवनावस्था में मैं और वो सूर्य तक पहुंचने की आकांक्षा में उड़े। सूर्य की अपार तेज को सहन न कर सकने के कारण वो तो पथ से ही लौट आया, पर मैं दम भी उड़ता ही चला गया। रवि के निकट पहुंच गया, सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं घोर चीत्कार के साथ धरती पर गिरा।
1: फिर
0: चंद्रमा नामक ऋषि को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मेरा उपचार किया, अपने ज्ञान द्वारा मेरे दंभ को नष्ट किया। उन्होंने ही मुझको बताया था कि त्रेता युग में भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। राक्षसपति उनकी पत्नी सीता का हरण करेंगे। सीता की खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे पंख हो जाएंगे। तू उन्हें सीता दिखा देना। आज ऋषि की वाणी सत्य हुई है।
1: सीता जी कहाँ है?
0: हाँ, देखो उधर, देखो उधर, त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी हुई है। वहां रावण निडर होकर राज्य करता है। उसी की अशोक वाटिका में सीता जी विचार मग्न बैठी है। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ तुम नहीं। गीधी दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। तुमसे जो भी शतयोजन समुद्र पार कर जाएगा उसे ही भगवान का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दृढ़ता से काम लो, राम को हृदय में धारण करो। देखो देखो, प्रभु कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, पंख उगाए हैं। कायरता छोड़, लंका पहुंचने का कोई उपाय करो। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगा।
2: बूढ़ा हो चुका हूं, अब शरीर में तरुणाई का लेश मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान राम ने वामनावतार लिया था तब मेरे शरीर में अपार शक्ति थी। बलि को बांधते समय प्रभु ने अपनी देह इतनी बढ़ाई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मैंने दो घड़ी में ही दौड़कर प्रभु के उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी।
1: मैं

0: पार तो जा सकता हूँ, किंतु लौटने के बारे में मेरे मन में कुछ संदेह है।
1: तुम सब कुछ कर सकने में समर्थ हो, किंतु तुम हमारे नायक हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? हनुमान, हनुमान, महाबली, तुम चुप क्यों बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे लिए कठिन है, जिसे तुम नहीं कर सकते? भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है।
0: हनुमान जी का ये अद्भुत रूप है, लगता है जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत हो।
2: मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। मैं सहायकों समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं।
3: जामवंत, मैं पूछूं तोई, उचित सिखावन तीन जहू मोई।
1: तुमने हम सबको उबार लिया है ताज, बस तुम इतना ही करो, सीता जी को देख और उनके समाचार लेकर लौट आओ। उसके उपरांत कमल जैसे नेत्रों वाले श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे। कौतुक के लिए वानर सेना भी साथ होगी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरिभक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारणहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोलक श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उन्हें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।